0: जो सात गिरास आए मेरा हर हर सोमपुर से गुरु मन भाव
1: जिसनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुर उपदेश सुना
1: तिस गुर सिख गुर उपदेश

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। गुरु साहब जी कहंदे ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने। कहंदे ने दोस्ती करनी है

एक ओ सज्जन जिनू कच्चा सज्जन कहंदे, कच्चा दोस्त जेड़ा चंगे पासे तू माड़ा पासे ले जाए, ओनू कहंदे ने कच्चा। कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई सत्संग जा रहे है ते रस्ते विच मिल पवे ते आखे छड गुरुद्वारे मंदिर की जाने, आपा किधरे दूसरे पासे चलते। ओ कच्चा सज्जन, कच्चा दोस्त, पक्का सज्जन ओ जे कोई माड़े पासे जांदा होवे ओनू आखे छड माड़ा पासा, चल आपा कीर्तन सुनी किसे चंगे महापुरुष कोल बैठ के रब दी गल सुनी। माड़े पासे तू जेड़ा मोड़े ओ पक्का सज्जन।

जोग कहन लगा एक और फिर जाओ ओसनु को मेरे लंगर विच आके प्रसादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया पाए तिलकू जी ने बुआ

भाई साहब कहन लगे मैनू स्वर्ग की लोड़ नहीं, फिर बुआ बंद कर ले। चेले वापस आए, जोगी कहन लगा एक बारी फिर जाओ, तिलकू नु आखो

मैं देखा फिर एक इन्नी शक्ति दा मालिक है जिड़ा मेरे आखे नहीं लगता। जोगी आसन ला के बह गया, रिधियां सिधियां प्राप्त सन, उन रिधियां सिधियां दे सदक

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक, मैं तेनु सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने

तेरे गुरु दा तेनू वास्ता बुआ ता खोल। गुरु दा वास्ता सुनिया भाई तिलकू जी उठे, उठ के बुआ खोले। गुरु दी गल ते गुरु दे प्यारे अपनिया जाना वार देंदे, गुरु दे चरणा तू कुर्बान हो।

तेरा गुरु केड़ा जिदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता, जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े है ते स्वर्ग नूं ठुकरा दिता, उस गुरु दे मैनू भी दर्शन करा मैं भी दर्शन करा। केड़ा ऐसा गुरु है जिदे चरणा नाल तू जुड़ के स्वर्ग दी परवाह नहीं करता। भाई तिलकू जी कहन लगे, मेरे गुरु मेरे नहीं ते सारियां दे सांझे ने, उन्हां दा नाम धन गुरु अर्जन।

इस जोगी ने पाई दिल को देनाल पाई, पाई दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां विच लग गया। हुण पाई दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाई दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इसे वास्ते सहबा ने कहा दोस्ती करनी उन्हां नाल।

गुरु साहब जी कहंदे ने गुरु सतगुर बोहल हर नाम का वड पागी सिख गुण सांझ करावे तिना गुरसिखा को हौ आ रहा जो बहन देया उठ देया हर नाम त्याग जिड़ा गुरु है ए नाम दा बोल है जेड़े सिख ने प्यारे ने ओ गुरु दे बोल दे कोल आके बहिंदे ने नाम दे बोल दे कोल ते गुरु दे गुणा दी विचार कर दे नाम दे नाल चोरियां पर

अचानक तूफान आ गया। लोकी सारे डर गए। मलान कहन लगे, बचन दी कोई उम्मीद है? तूफान बड़ा भयानक है, बेड़ी भी डोलन लग पी। इस तरह लगता है होन डूबी कि होन डूबी। मला कहन लगा, जे कोई आदमी अपनी बलि देवे ताए तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वाल देखन लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन।

लगता भी कोई साधु ना एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है एनु चुके सुट दे जदू सारे मेरे वाल देखन लग पे ते मैं समझ गया कि इना लोकां ने मैनू चुक के जरूर सुट देना ओही गल हुई सारे मेरे दुआले हो गए।

जोगी वाल मेर की निगाह नाल देखिया रिद्धियां सिद्धियां तो उत्ते करके गुरसिख बना दिता। भाई दिलकू वालो साहब जी।

कोई रोज रोज नहीं मिल सकता। जो सेवा मिल गई है तो कर ही गया, कदे तो मार्ग मक्ष गंगा राम रात दिन भांडे मांडी जाने, गुरु के दर्शन की उड़ीक रात दिन उड़ीक कर जाए, कदों भागा वाला दिन चले। धन गुरु अमरदास पातशाह जी के दर्शन गुरु बख्शिश कर, जिस तरह बख्शिश हो रही गंगा राम की सेवा थाए और कल करा सामान क्योंकि कहीं ने इशारा किया है सुख की घड़ी का पता ही नहीं, आप खुश रहिए दुख की एक घड़ी आ जाए कई चीज नहीं आ जाए पता ही नहीं लगे किस तरह से, यही है मालिक धन गुरु अमरदास पातशाह जी मार्ग ने मेहनत की तो आप जो सेवा मिल जाए गुरु का की करो, तो इस उड़ीक आप शामा तक इंतजार करिए। पता गंगाराम के सदके सानू ही दीदार का किरका मिल जाए तो साडा कीर्तन कीता गुरु कारण किसी की कामना जाया नहीं जिसने भी तन तन मन धन न जिसने भी सेवा की थी है हजूर फरमाते जाके सिमर सब कुछ पाइए बिरथी उसी भी कामना कर अपनी कामना भी गंगा राम की कामना किस तरह गुरु ने साढ़े टाइम साढ़ी आशा जी अमृत वेला सच ना वड़े आई कि नाम ही अमृत वेला है वो उसकी कल शाम समय अनुसार आओ कल पूर्णमाशी क्योंकि पूर्णमासी का नाम लीए तो धन गुरु नानक पातशाह खां के सामने पूर्णमासी गुरु ने माण बख पूर्णमासी ऐसी पूर्णमासी आई रब प्रगट हो गया खुश रही बाबा ने सिंह जी उथे चौबी घंटे का सत्संग है डेली कोई आए चाहे ना पर पूर्णमासी का समाज खास होंगे साथ इंडिया हो बाबा जी की बख्शिश द्वारा नानक सर हाजरी भरता ऐसी साई की प्रेरणा अनुसार पूर्णमासी थोड़े को जुड़े हुए थोड़े दर्शन करके मैं भी उस पवित्र पावन याद हिरदे च सामांगा सुरत नानक सर पहुंचा के दर्शन कर पूर्णमासी आप आओ गंगा राम की साखी सुन के अपना जीवन सेवा करो। आप जिस गुरु ने सानू ये दात बख्शी ओदा शुकराना अदा करिए अरदास करिए पले अमरदास बनते तेरी रहमत है मेरे पातशाह कलयुगी जी थां थां से कलयुग रुकावटा पे माया कई रूप धार के पीछे किसे आए अजे आ गए तो मार्ग दे दारू प्राप्त करके गुरु नु पा गए खुश गुरु नु पा गया जीवन सा सारी मिलके करिए उस तो प्राप्ति करिए धन गुरु नानक पातशाह आप जी ने धर्म परम सारी गुरसिख माई पाई धन गुरु राम का अमरदास पातशाह जी आप जी का आगमन गुरपुरब मना
ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਦਰ ਵਜੋਂ ਪੌਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ।

साहिब श्री गुरु रामदास जी राग कल्याण भुपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे समेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जैजावंती दे अंतर्गत विषय विकारां विच ग्रसे नाम विहूणे मन दी दशा दा बयान कर रहे हन। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनह कान, बिखियन स्यो अति लुभान मत नाहिन फेरी।

तत्पर सेवा विच जुड़े रहो। मालिक आपे कृपा करनगे, बख्शिश करनगे। जे तुहाडी आस है साहबां दे दर्शन करन वास्ते तां साहब जरूर दर्शन देणगे। सेवा करदिआं कुछ दिन लगे, साहबां दा अवतार पुरब नजदीक आ गया तां सोना ते मोहना मन विच आस पैदा हो गई कि साहबां दा पुरब नजदीक आ रहा है। फुल प्यार करी पुरब ते फुल भेटा करांगे। ए दोनों जने की आस लाई बैठे हैं, श्रद्धा ते भावना नाल फुल भी तैयार कर रहे हैं ते नाल नाल विराग विच ए शब्द गायन कर रहे हैं। मन विराग भया दर्शन देखने का चाहो।

एक रमता साधु मौना दे दरवाजे से आ खड़ोता ते कहन लगा मालन पिछया दे ता मौना अंदरों आटे दा दुख भर के ले आई के फकीर साईं नू दे देवा। फकीर साईं नू देन लगी ता फकीर ने इनकार कर दिता आखिया मैं आटा नहीं ले आया मैनू आटा नहीं चाहिदा। तमोना ने आखिया फकीर साईं की चाहिदा है आखिया मैनू बाग विचों फुल चाहिदे हन मैं फुल लेन आया हां। तमोना ने आखिया फकीर साईं इस फुल्लां दे असी मालिक नहीं असी सेवादार हां इस फुल्लां दे मालिक साहिब कलगीधर पातशाह हन असी फुल किवें दे सकदे हां। ता फकीर साईं ने अखां लाल करनियां आख्या जे तुसी फुल नहीं दियोगे ता मैं तुहानू शराब दे देवांगा। ता शराब दा नां सुणदियां ही मोहना ने आख्या अगे एक गुरसिख

रोटा जलाली फकीर बाग दे अंदरों फुल तोड़े हन पोटली भरी है फुल तोड़ के ले गई ता जिस वक्त सोना आया की तकिया के बाग विच कोई फुल नहीं तकदियां सारी ही बेहोश हो गया बेहोश हो के डिगते सोना ते मोना दोनों जने बाग विच बेहोश होए पए ता ओ रोटा जलाली फकीर फुलां दी पटारी साहबां दे चरणां विच जा भेटा कीती अते मत्था टेके बेंती कीती पाछा ए फुल प्रवान करो सतगुरां ने पुछिया फकीर साई तू कौन है ता फकीर ने आख्या जी मैं रोटा जलाली ता गुरु जी ने आख्या तू रोटा जलाली नहीं तू रोटा पलाली है फकीर साई तू फूल नहीं तोड़े तू आज दो दिल तोड़ ले आया है दो जीवंदियां रूहां टूट गईयां हन तू वाहिगुरु दी गोद विचों दो लाल तोड़े हन तू जलाली नहीं तू पलाली है ता साहिब कलगी तर पाछा आशंगासन तो उठे बाग वाल तुर पे जिस वक्त बाग विच आए ता की देखिया सोना ते मोहना दोनों बेहोश पे ता साहिबा ने दोनों दे सिर ते हाथ फेरिया ते आख्या जागो प्यारियो होश करो जरा नैन उघेड़ो जिन्ना दर्शना नु तुसी तरसदे सी आज आप खरीदार होके तुहाडे दर्शन मुल लैन आया है जादो अखां खोलो ता माता जीतो जी आखन लगे वाह साई दे रंग जे दर्शन देन आए हन ता दर्शन करन वाले हाजर नहीं ता माता जी ने आख्या मेरे बच्चियो अखां खोलो दर्शन करो ठाकर जी दर्शन देन वास्ते आए हन जिन्हा दे दर्शन वास्ते आप तरस रहे साओ आज तो आप चल के आए हैं ता साहिबा ने इन दोहां दे मुंह विच जल पाया आख्या बच्चो अखां खोल मैं तुहाडे कोल चल के आया हां तुहाडी सेवा ते प्रसन्न हां ता इतने नु दोनां ने नेत्र खोले ता की तकिया जिस ठाकर दे असी दीदार करना चाहुंदे सां ओ ठाकर साडे कोल बैठा है मिट्टी ते चौकड़ा मार के बैठा है जिस दे दर ते दुनिया जांदी है नक रगड़दी है अज ओ गुरु जो सिंघासन ते बैठदा है अज हेठां पुंजे बैठा है मिट्टी ते आसन लाई बैठा है ता दोने उठे साहिबां दे चरणां नाल लिपट गए पाछा इतनी देर कीती है आपने दीदार वास्ते साडा रूह रूह तरस रिया रोम रोम तरस रिया है ता साहिबां ने दोनों ते कृपा कीती गलवकड़ी विच ले लिया आख्या बच्चियो तुहाडे विच इतना वैराग सी तुसी मेरे मन नु जित लिया आज साहिबा ने इन्हां दोहां ते बख्शिश कीती इन्हां दोहां नु गुलवकड़ी विच लै लिया सच जाणो जिन्हां दे मन विच विराग हुंदा है मालक दे मिलन दी ताल हुंदी है आखिर इक दिन मालक मिल जांदा है जिन्हां दे मन विच विराग नहीं ओ बेशक कंदरां विच चले जाण बना विच चले जाण पर मालक दी प्राप्ति नहीं हो सकती मालक दी प्राप्ति कदों हुंदी जदों मन विच वैराग हो जांदा जो साहिब धन गुरु अर्जन देव पातशाह अपनी बाणी द्वारा फरमाउंदे हन कि ओ मनुख भागा वाला है जिस दे मन विच तेरा प्यार पैदा हो गए जिस दे मन विच तेरे दर्शनां दी तांग पैदा हो गई जो साहिब

अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं। मन वैराग भया दर्शन देखने का चाओ, आओ सारे ना तकानू प्यार नाल जपिए। जो साहेब धन गुरु अर्जन देव पातशाह अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं।

हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दें तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करियो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कटे हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हरिमंदर विच बिठा दिना हाले के जोहरा फिर गया पर उना जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे ओथे दे ओथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नाम देव नु मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उना दे दिमाग ओथे दे ओथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हन कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हरिमंदर विच उदों भी बैठे सन नामदेव हरिमंदर विच अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परां हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शिया गुरु अर्जन साहिब ने ते गुरु दा दित्ता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड़दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दा रूहानी रूह की खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

एक शाहीतारी प्रेमी तख्त पोछते बैठे, हाथ विच माला फड़ी रह राज दा पाठ पिया कर दे। इस दा लड़का बाहरों भटकदा भटकदा आया, अपने पिता नूं पाठ करदा देखिया तां कोल बैठ गया। पिता ने पाठ किया, पुत्र ने सुनिया, अरदास कीती, पुत्र ने वह भी सुनी। अरदास तो बाद ए लड़का पुछदा है, पिता जी ए जो तुसी पढ़ रहे सी मैनू सुन के बड़ा आनंद।

जिवें पहला कदी इस लड़के ने पाठ नहीं सुने। वैष्णव साधुआं दे कोल ए बहुता जाया करदा सी। पिता कहन लगा बेटा ए कलाम नहीं, ए धन गुरु नानक साहब दी बाणी। ए सुन के लड़का कहन लगा पिता जी मैं ते एवें बाहर भटकदा रहा, मन नूं शांति नहीं मिली, अज ए बाणी सुनी मन टिक गया। जिस गुरु दी बाणी विच इन्ना आनंद है, जे कदी उस गुरु दे दर्शन हो जान ता पता नहीं किन्ना क आनंद प्राप्त होवेगा। पिता जी ओ गुरु किथे? मेरा चित करदा है कि मैं उस गुरु दे दर्शन करा। पिता खुश होया कि मेरे पुत्र दा ध्यान गुरु वाल आया। कहन लगे बेटा धन गुरु नानक साहब तां ऐस वक्त नहीं हैगे, हैगे तां हर वेले ने, हर जगह ने, पर संसारी तौर ते ऐस वक्त उन्हां दा पंज भूतक शरीर इस मातलोक विच नहीं। ए सुन के लड़का कुछ उदास होया, कहन लगा पिता जी मैं फिर अभागा रह गया, मैं गुरु दे दर्शन नहीं कर सकता। पिता ने कहा नहीं बेटा, गुरु दा सिख कदी अभागा नहीं होया। गुरु नानक साहब दी जगह उन्हां दी दसवीं जोत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंजाब दे विच आनंदपुर साहब जोतां जगा रहे ने। जे तू दर्शन करने ने ता धर्मशाला विच संग इकट्ठा हो रहे है। जिन्ना ने परसों आनंदपुर साहब जाना है तू भी नाल चलिया जाई। सफर लम्मा होवे नाल संग होवे ता गल्लां बातां करदे आ, सफर मालूम नहीं होंदा, तू संगत दे नाल चला जा। और खुशी कि संग भी इन्हां दिनां विच जा रहे है, जान दी तैयारी की थी। पिता बड़ा खुश है कि मेरा पुत्र अज गुरु दे दर्शन करन आनंदपुर साहब जा रहे है। तैयारी हो गई, 100 रुपया पिता ने दिता कि बेटा मेरे वालों गुरु दे चरणा ते रख के मथा टेकी, आठी पातशाह हथां दी मैल है, इस नूं सफला करो। 500 रुपया इस लड़के ने अपने वालों भेटा धरन वास्ते जेब च पा लिया, समान लिया, धर्मशाला जा पहुंचिया। संगत सारी जुड़ी है, जान तो पहला सारी संगत ने अरदास की, सारे अरदास की है कलगी धर पातशाह आप दे दर्शना वास्ते। असी सारे इस उज्जैन शहर तो तुरन लगे हैं, कृपा करनी साड़ी यात्रा सुखां दे नाल संपूर्ण होवे, आप दे दर्शन प्राप्त हो। अरदास करके शब्द पढ़ दे, ए सारे लोग ए सारी

सारी संगत वाल देखे है। सारी संगत वाल देखन तो बाद ए जड़ा लड़का सी सहजधारी इस उत्ते निगाह टिका दिती। इसने भी देखिया कि गुरु साहब जी मेरे वाल देख रहे, समझ गया कि मेरे मन की भावना गुरु साहबा ने जान ली। जो मैं मन विच सोच रहा कि गुरु के मन विच दया नहीं, ये जीवां नूं मारदे ने, गुरु साहबा ने जान लिया। पर फिर पता लग गया कि गुरु जे किसी नूं मारदा ओनू मुक्त कर दिंदा। कर्मा की खेड होंदी है, उस कर्मा की खेड का सदका ही जीव जेड़े ने जूना विच भटकदे ने, ते गुरु कृपा करके उन्हां दा जन्म मरण का गेड़ जिहड़ा है वह कट दिंदा। सारी संगत किले

झाड़ू फेरिया लंगर विच भांडे मांजे गुरु दियां कथा कहानियां सिखां कोल सुनिया मन भिज गया। एक दिन कलगीधर पातशाह इकले बैठे सन। एक सहजधारी लड़का गुरु साहिबां दे कोल गया 100 रुपया पिता वाला 500 रुपया अपने कोलों गुरु साहिबां दे चरणां ते रख के मथा टेकिया। नाले किया पातशाह ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲੀ ਕਰੋ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਈ ਇੱਕ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ सिखा इस कड़े दा अदब रखी जो मंगेगा वो तेनु मिलेगा। ए बख्शिशा लैके खुशी खुशी आनंदपुर साहब तू तुर पिया। बड़ा प्रसन्न है बड़ा खुश है पर जदों आनंदपुर साहब तू बाहर निकलिया ते सारा आनंद गुआच गया। माया वाली बिरती फिर जाग पई कहन लगा मना बहुत माड़ा कीता 600 रुपया रोड़ के आ गई एकड़ा प्रसाद दिता है जिड़ा पिता घर रोज बनांदा ए सर्वलोह दा कड़ा दिता है नाले वचन दिता है कहंदे नी जो मंगेगा तेनु मिलेगा पर जिस कड़े दी अपनी कीमत 4 आने नहीं इन्हें मेनू 1000 रुपए कितू दे देने। बड़ा उदास हो गया मुंह लटकाए ते तुरदा तुरदा चमकौर साहब।

बाजार में चूहे लंघ रहे हैं पर बड़ा उदास। एक गुरु का सिख ध्यान सिंह माजरी है बाजार में खलोता सी, इसनु बाहों फड़ के घर लै गए, जल पानी नाल सेवा की थी। ध्यान सिंह कहन लगा, भाई लगदा आया गुरु की नगरी तो पर उदास बड़े। गुरु दे घरों जिहड़ा भी आंदा है उहदा चेहरा खिड़िया हुंदा है, पर तू उदास है की गल? कहन लगा, सिखा की दसा, उजैन तू गया, तीन महीने सेवा की थी, 600 रुपया रख के गुरु नु मथा टेकिया, टेके आ कुछ बख्शिश करो, एकड़ा दिता है जेड़ा मेरा पिता घर रोज बनांदे, एक लोहे दा कड़ा ते बचन दिता है, कहंदे सी जो मंगेगा मिलेगा, पर सिखा तू दस, जिस कड़े दी कीमत अपनी चार आने नहीं उन्हें मैनू की देना? ये गल सुन के ध्यान सिंह उथों उठे, घरवाली को आ गए। ध्यान सिंह घरवाली नु कहन लगा, भलीए लोके, एक मूर्ख सिख आया, उन्हों की पता कि गुरु का वचन की हुंदा है? जे तू मेरे नाल सहमत होवे, माया दा लालची 600 ते 5 रुपये वध दे के गुरु दा बचन ते कड़ा सी उहदे कोल लै ली। घरवाली ने कहा, स्वामी जी बाजार जाइए, 1 रुपए दी 1 मण कणक आंदी, उस कणक नूं घर लिया के साफ करन लगे आ, एक दाणा चुकीए दूसरे पासे रखिए ते आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर एक दाणा चुकीए फिर आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु। एक मन कणक विच जिन्ने दाने ने सारिया ते वाहिगुरु वाहिगुरु कह के ओ कणक साफ करिए, उस कणक नूं फिर बाजार लै जाइए वेचण वास्ते, तां बाणिए ने ओहदा मुल 1 रुपया ही पाणा, पर जे ओ कणक जिदे ते सिमरन करके साफ कीती गई है ओ कणक गुरु घर लै जाइए ते गुरु नानक तुठ के अपने सेवक नूं अपनी जगह दे दिंदा है, इन्ना गुरु दयाल हो जांदा है। गहने ला दिते, गहने वेच के इहनूं पैसे दिओ, इहनूं की पता कि गुरु दा बचन की हुंदा है? 605 रुपया जेब विच पा के ध्यान सिंह माजरिया फिर उस लड़के दे कोल आ

रोन लग पे है ता गुरु साहब ने कहा पाई रो ना कर जाओगे कर जाके बस्तर शाद के पांच सिखा नु घर बुला के प्रसाद छकायो कड़ा प्रसादी देख तैयार करियो आनंद साहब का पाठ करियो जो मंगोगे उस वक्त अरदास विच ओ तुहानू प्राप्त होवेगा। गुरु की वड्याई करदे वापस उजैन पहुंचे जो मंगया ओ गुरु ने फिर बख्शिश कीता सारे दुख दूर हो गए सुख जड़े सन उन्हां नाल फिर घर भर गए। ते गुरु साहब जी का शब्द है भाई गुरु का वचन की है जो आपां गुरु की बाणी पढ़दे गुरु के वचन नूं मन्नांगे गुरु के वचन की कमाई करांगे तां साडा जीवन सुखां दे नाल भर जावेगा। जे गुरु के वचन की सार नहीं लवांगे ते फिर भाई दुखी होवांगे।

धन गुरु अर्जुन देव महाराज, दिन राती आराधा प्यारो, निमख ना कीजे ढीला। और ए भी गुजरी राग, और गुजरी राग भी तुम्हार है।

परम सत्कार योग सत संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करोगी धंधिया संकोच के शरदा प्रेम भावना लेके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में पुजे आके गुरमुख प्यारियां तो गुरबाणी का कीर्तन गुर इतिहास सरवण किया। जिन्ना समा होर महाराज बख्शते ने अज इस पंडाल का पंजवा समाप्ति का दीवान है। सारियां संगतां गज बज के बोल के शरदा भावना नाल जिहड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज दा अदब मुख रख के जिथे जिथे जगह मिलदी है सतगुरां नूं हाजर नाजर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी कृपा होवे उदों सतगुर पातशाह जी कृपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नूं मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल होंदी है एक लोड़ होंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुजिया नहीं जा सकदा पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ां व्यर्थ गईयां। जरूरत ते मंजिल इनू जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रे बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारियो मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हो। हुण दोवां दा संबंध किन्ना है ते गुरमुख प्यारियो सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना। पर जे झाड़ ना निकलिया वो रे पानी व्यर्थ गया। खुश झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी क्रिया है। गुरबाणी ने तो फैसला किया है आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हां दी लोड़ नहीं सी। ये मजबूरी है मनुख दी समझ लो गुरमत विचों एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे ओ कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उनू बोलने दी लोड़े नहीं हुंदी। जेड़े बंदे नू देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उनू बोल के दसण दी लोड़ नहीं। जिनू दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उनू कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलने दी लोड़ पई।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ, ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਭਾਈ ਗਿੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਖ ਵਰਤੂਗੀ ਹੁਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

मैं अपने आप नू बंदा कही जमा जब गुरु ग्रंथ साहब ने मैनू जिन कहा राक्ष कहा कुछ सतन कल युग अंदर अवतार होगा कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार पुत जनूरा धी जनूरी ते जेड़ा आप राक्ष शब्द देवते थोड़े जमने गां महाराज कहते पुत धी भी हो जी ते और हुण जोरू जिन्ना दा सिकदार जोरू नाम है इस्त्री दा इस्त्री तो इत्थे इस्त्री अर्थ नहीं लैणा इस्त्री तो लैणा अर्थ रूप सुंदरता काम वासना वो अज सारियां ते हुकूमत कर रही है अज के आखो सतना हे महाराज दी बाणी दे बचन 500 साल पहला ने माया तारी अत अन्ना बोला अखां विच अंध आ गया गुरमुख प्यारियो परखे नहीं है ते कन्ना विच बोले कातों होए होए हैं निंदिया बहुत सुनते हैं गौण बहुत सुनते हैं रिकॉर्ड बहुत सुनते हैं पर बोले हो गए गुरबाणी सुनन तो सच सुनन तो इत मेरे वर्गे कई धारना पढ़ने कहते सच का काल पै गया हमें पूछया करो भी सच है नहीं तू इतें किमें फिर खुश गुरमुख प्यारे जिस दिन सच ना रहा तो जग रह जू सच कितने जाने वाली चीज है जे मुक जावे फिर वो सच्चे नहीं सच तो अमर चीज जो जग तो पहला भी इतने जगते होंगे भी इतने जिस दिन जग ने नहीं होना फिर इतनी वो सच्चे ताए क्योंकि हर वक्त मौजूद है न बाढ़ है न घाट है न बाढ़ घाट हो अजी कहते काल पै गया डीजल है ना सच सीमेंट है ना जी शॉर्टेज आ गई गुरमुख प्यारे काल नहीं पिया सच काल कूड़ वरत्या ये जड़ बाणी विचारच करने तुकदे तो वरत्या शब्द तो अर्थ शुरू होने वरत्या शब्द तो अर्थ होने हुण वरत्या शब्द के अर्थ तुसी कोई भुले वे तो नहीं है भुलेखा ही है 36 बार तुसी दिन च कह रहे हो चाह वरत लो दुध वरत लो पानी वरता दो वरत्या कहणगे लंगर वरत गया अजे लंगर वरतने ए वरत गया शब्द तो अर्थ शुरू होने सच दा काल नहीं वरतारा कूड़दा हो गया किमें हो गया वरतारा दो महीने पहला थोड़े घर च जाईदा था किते रजाई नहीं थी दिखती किते कंबल नहीं था दिखता किते कोटियां नहीं सी दिखदियां हुण जाओ ते एक एक मंजे पर तीन तीन पईआं अजखे आखो सतनाम समझने पर 3 महीने पहला रजाइयां दा काल पै गया था नहीं काल नहीं सी पिया पाकिस्तान भेजतियां तीआं नहीं थोड़े घर चेतियां तुसी बरतनियां छड़तियां तीआं अजखे आखो सतनाम बेचारियां पेटियां च बंद करके रखतियां ती भी टिकियां रहो तीआं तो थोड़े घरे रजाइयां कंबल भी थोड़े घरे ते कोटियां भी थोड़े घरे तीआं पर तुसी इस्तेमाल करनियां छड़तियां तीआं हो बरतनियां छड़तियां सी यह है अर्थ तुकदा सच अपने कोले अपने बरतना छड़ता अज के आखो सतना गया किते नहीं आपा वर्तन झूठ लग पे छजदा काल पाउण वाला जमे ही कौन तो जपजी साहब ने कह दिता